0: ज्ञानी सर्व का ठाकर,
1: ब्रह्म ज्ञानी की मित कौन बखान, ब्रह्म ज्ञानी की ब्रह्म ज्ञानी जान,
0: ब्रह्म ज्ञानी का अंत न पार, नानक ब्रह्म ज्ञानी को सदा नमस्कार,
1: ब्रह्म ज्ञानी सब श्रेष्ठ का कर्ता, ब्रह्म ज्ञानी सद जीवा नहीं मरता,
0: ब्रह्म ज्ञानी मुक्त जुक्त जिया का दाता, ब्रह्म ज्ञानी पूर्ण पुरख विदाता।

0: अंतर उतार पस प्रेत मुगत पाथर को उतार
1: सर्व रोग का औषध नाम कल्याण रूप मंगल गुणगाम
0: काहू जुगत कित न पाइय धर्म नानक तिस मिले जिस लिखिया तुर करम
1: जिसके मन पारम का निवास तिसका नाम सत राम दास
0: आत्म राम जिस नजरी आया दास दस सुंदर पाए तिन पाया
1: सदा नित नित हर जान सो दास अर्घ परवान
0: अपने दास को आप कृपा करे तिस दास को सब सो

0: सन
1: अश्वनी
2: अविनाशी ब्रह्मन में राख मानव की तू प्रीत त्याग
1: इस फिर परा नाही किस कोई सर्व निरंतर इको सोई
2: आपे विनय आपे दाना गहर गंभीर गहीर सुजाना
1: पार ब्रह्म परमेश्वर गोविंद कृपा निधान दयाल बख्शंद
2: साध तेरे की जानी पाओ नानक है मन एहो अनराओ
1: मनसा पूर्ण सरना जोग जो कर पाया सोई होग
2: हरन पान जाका नेत्र पोर तिसका मांतर ना जाने होर
1: अंध रूप मंगल सत जाकै सर्व तो सुनिए करताकै
2: राज में राज योग में जोगी तप में तपीसर गृहस्थ में भोगी
1: त्याय त्याय पंथ सुख पाया नानक सुर का कन्हैं तन पाया
2: जाकी लीला की मित नाहे सगल देव हारे अवगाहे
1: पिता का जन्म के जाने पूत सगल परोई अपने सूत
2: समात ज्ञान त्यान जंदे जंदास नाम त्याव है से
1: गुण में जाको फरमाए जन्म जाए
2: पूज नीच तिसके स्थान जैसा जनावे तैसा नानक जान
1: नाना रूप नाना जाके रंग नाना पे करे रंग
2: नाना वेद किनो विस्तार प्रभ अविनाशी एकंकार
1: नाना चल करे खिन बाहे पूर रहे पूर्ण सब पाए
2: नाना विदकर बंत बनाई अपनी कीमत आपे पाई
1: सब कर तिसके सब तिसके ताओ जब
2: नाम के तारे सगले जंत नाम के तारे खंड ब्रह्मांड
1: नाम के तारे सुमृत वेद पुराण नाम के तारे सुनन ज्ञान ध्यान
2: नाम के तारे आकाश पाताल नाम के तारे सगल आकार
1: नाम के तारे पुरिया सब भवन नाम के संग उदरे सुन द्रवन
2: कर कृपा जिस अपने नाम लाए नानक चौथे पद में सो जन गत पाए
1: रूप सत जाता साते स्थान केवल प्रदान
2: करतूत सत सत जाकी बाणी सत पुरख सा माही समाणी
3: सत कर्म जाकी रचना सत
1: मूल सत सत उत्पत
2: सत करनी निर्मल निर्मली जिसे बुझाए तिसे सब भली
1: सत नाम प्रभु का सुखदाई विश्वास सत नानक गुरते पाई
2: सत बचन साधु उपदेश साते जन जाके हृदय प्रवेश
1: सत निरत पूजा जे कोई नाम जप का की गत होई
2: आप सत किया सब सत आपे जाने अपनी मित गत
1: जिसकी से तो कर्ण हार अवर ना बूझ करत विचार
2: करते की मित ना जाने किया जो नानक ज्योत पावे सो बरतिया
1: विस्मन विस्म भय विस्माद दिन बूझया तिस आया स्वाद
2: प्रभु के रंग राज अन रहे गुर के वचन पदार्थ लहे
1: होए दाते को काटन हार जाका संग करा संसार
2: जन का सेवक सो बड़ पागी जन के संग एक

0: जब एक है हर गम पार तब नरक सुर को कौन अवतार जब आपे आप अपनी जोत तरह तब कवन निडर कवन कत डराय
1: अपन
0: अविनाशी सुख अपन आसन तय जन्म मरण को कहा विनाशन
1: पूर्ण करता प्रभ सोई तब जम की त्रास कहो किस होई
0: जब अवगत गोचर पब एका तब चित्र गुप्त किस पूछत लेखा
1: जब नाथ निरंजन गोचर गाती तब कौन छुटी कौन बंधन बाती
0: अपन आप ही अचर्जा नानक अपन रूप आप ही ऊपर जा
1: जय निर्मल पुरख पुरख पात होता तै बिन मैल कहो क्या तोता
0: जय निरंजन निकार निर्वाण तै कौन को मान कौन अवमान
1: जय स्वरूप केवल जगदीश तै शाल शिखर लब्ध को पीस
0: जय ज्योत स्वरूपी ज्योत संग समावै

0: अष्टपदी
1: संत संग अंतर प्रभ दीठा नाम प्रभु का लागा मीठा
0: सगल समिगरी एक घट माहे अनक रंग नाना तिसकाहे
1: नौ निध अमृत प्रभ का नाम देही मह इसका विश्राम
0: सुन समाद अनहत नाद कह न जाई कब विस्माद
1: इन देखिया जिस आप दिखाए नानक तिस जन सोजी पाए
0: सो अंतर सो बाहर अनंत घट घट प्याव रहा भगवंत
1: तरण माहे आकाश पयाल सर्व लोक पूरन प्रतपाल
0: बांतन पर्वत है पार ब्रह्म जैसी आज्ञा तैसा कर्म
1: जैसी कौन पानी वह संतर माहे चार कुंठ दै दिसे समाहे
0: इसते पिन नहीं कोठाओ गुर प्रसाद नाल सुख पाओ
1: वेद पुराण सिमरत मह देख ससियर सूर नक्षत्र

सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी, श्री नानक परशोत्तम परम परावरनाथ, जुगल चरण मम वंदना, तर कर मथ श्री नानक अंगद गुरु

राख पिता प्रभ मेरे मोहे निर्गुण सब गुण तेरे पंच बिखादी एक गरीबा राखो राखण हारे खेद करे अर बहुत संतावे आयो शरण तुहारे कर कर हारियो अनक बहु पाती छोटे कथु नाही एक बात सुनता की ओटा साथ संग मिट जाही कर कृपा संत मिले मोहे तिन ते धीरज पाया संती मंत दियो मोहे निर्भव गुर का शब्द कमाया जीत ले ओए महाविखादी सहज सुहेली बाणी कहो नानक मन पया प्रगासा पया पद निर्वाणी।

परम सत्कार को शासन। सतगुरु जी, धन गुरु अर्जन देव जी महाराज, इस पावन शब्द दे विच उस परमात्मा दे नाम दी सिफत करदे हन, दुख भंजन तेरा नाम जी, दुख भंजन तेरा नाम, सर्व रोग का औखद नाम, सारे रोगां दा दारू वाहेगुरु दा नाम है। पर ए नाम दा दारू उन्ना नू मिलदा है जिड़े नाम नाल जुड़दे हैं। अरदास करदे हैं, हुण अरदास कीती ते हुणे ही मन विच ख्याल आ जांदा जो हुणे कीता हुणे मिल जावे। अरदास कीती ते नाल ही फल दी इच्छा, लेकिन कुछ मन जुड़े, कोई बाणी दा शब्द मन दे अंदर वसे, हुण दवाई दा असर भी ताही होंदा है ना जे दवाई खाई। दवाई लेके आ गए, डॉक्टर कोल गए, डॉक्टर ने दस दिता तेनू ए बीमारी है, ए दवाई लै इस नू खा आराम आ जाएगा। डॉक्टर कोल भी चले गए, अपने आप नू दिखा भी दिता, दवाई भी खरीद ली, घर आ गए, दवाई लिया के बारी विच रख दी, आप मंजे ते लम्मे पै गए। कोई हाल पुछन आया, की हाल है, ते मंजी ते पिया लम्मा बंदा ए आखे कि कोई फर्क नहीं पिया। डॉक्टर कोल भी गया, डॉक्टर ने दवाई भी दिती पर आराम कोई नहीं आया। हुण पुछे ए दवाई ते खाधी नहीं, आराम कित्थों आवेगा? आखो सतनाम श्री वाहे। गुरु घर ते आए, अरदास भी कीती, करवाई भी, लेकिन उपदेश ते मन विच वसाया ही कोई नहीं, ती असर किवें होवेगा? आखो सतनाम श्री वाहे। बाणी नाल ते मन जोड़िया ही नहीं, दुख किवें दूर होवे? दवाई खाधे बगैर आराम नहीं, खावांगे ते आराम आवेगा, ते जे बाणी मन विच वसेगी ते ताही दुखां दा नास होवेगा। इधर अरदास कीती ते नाल ही सोचिया बस हुण सब कुछ मिल जाए, ये सोच बड़ी माड़ी है। अरदास गुरु सुनदा है, पर घटो घट सानू ए ते चाहिदा है ना कि जिद कोल कुछ लैना उहदे नाल मन ते जोड़िए, उहदी बाणी ते मन विच वसाईए। आम लोकी ये सोचदे ने, तीर्थ यात्रा ते जाओ, एक वारी इशनान कर लो ते सारे पाप खत्म हो जांदे, पर गुरु साहिब जी कहिंदे ने नहीं, मिले जे तीरथ नातियां डड्डा जलवासी। जे तीरथ ते नहाण दे नाल ही सारा कुछ मिल जांदा है, फिर मच्छियां डड्डू जिहड़े पानी विच रहिंदे ने इह मुक्त क्यों ना हो गए? सानू तीरथां ते जाण दा ते पता है, पर जाना किस तरह है इह नहीं पता, नहाना किस तरह है इह भी नहीं पता। साहब जी उपदेश करते हैं, काया अंदर अमृत सर साचा,
काया कहते ने शरीर नू। एक अमृतसर इस धरती ते है पंजाब दे विच, एक अमृतसर साडे शरीर दे अंदर है। सर कहते ने सरोवर नू, साहब जी कहते ने काया अंदर अमृतसर साचा मन नावै पाए सुभाई है। नाना किस तरह शरीर पानी विच नावे, मन बाणी विच नावे, मन नावे। जे मन नहीं नाता भाव मन बाणी नाल नहीं जुड़िया ते किसे भी तीर्थ ते जाके इशनान कर लो ओदा कोई लाभ नहीं। गल ते मन दी है, मन नावे पाए सुभाई है। शरीर पानी विच नावे, मन बाणी विच, ते फिर असर होवेगा। तो सतगुरु जी उपदेश करदे ने उहदा नाम दुखां नूं दूर करन वाला है, पर जिस तरह दवाई खाते बगैर आराम नहीं, इसे तरह जदों तक नाम मन विच नहीं वसदा उदों तक दुखां दा नाश नहीं हुंदा। ते जिहड़े नाम नाल मन जोड़ लैणगे उहनां दे दुखां दा नाश होवेगा। आओ एक बारी करो सारी रसना पवित्र।

वाणी सवाल है और जवाब है। दुखां नूं दूर करन वाला नाम है पर किस तरह आठ पहर आराधी अठे पहर उहदी आराधना करिए उहदे नाल मन जोड़िए ते दुखां दा नास होवेगा। डाक्टर भी कह दिंदा है ना दवाई ते दित्ती है ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਦੋ ਖੁਰਾਕਾਂ ਖਾ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਛੱਡ ਦੇਵੇਂ ਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਰਾਮ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹੁਣ ਦਵਾਈ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਦਵਾਈ ਖਾਈ ਜਾਣੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਰੋ ਰਸਨਾ ਪਵਿੱਤਰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਅੱਜ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਦਿਹਾੜਾ जिस दिन अठवें पातशाह गुरु हर कृष्ण साहब जी महाराज ने इस संसार ते अवतार लिया। आओ सारे प्यार नाल एक वारी जपो जो तन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज कितनी श्रद्धा भावना दे नाल आप लिखते हैं। श्री हर कृष्ण ध्याइए जिस डिठे सब दुख जाए। जिन्हां नूं देखण दे नाल ही दुखां दा नाश हो जांदा है। अठवें बाला प्रीतम गुरु हर कृष्ण साहब जी महाराज गुरुगद्दी ते बैठे संगतां दे सद्दे ते गुरु हर कृष्ण साहब जी महाराज दिल्ली वल चले। दिल्ली जांदे होए कई जगह ठहरदे संगतां नूं उपदेश करदे हरियाणे दे विच पंजोखड़ा नाम दा एक स्थान है जिथे गुरु हर कृष्ण साहब जी आके ठहरे। बड़ी बड़ी दूरों संगतां आन लगियां। इसे पंजोखड़े जिते होर संगता आईया एक लाल चंद नाम दा पंडित भी आया। पंजोखड़ा जिते गुरु ने चरण पाए ते पंजोखड़ा साहब बन गया। आखो सतनाम श्री वाहिगुरु। लाल चंद दर्शन करन आया गुरु हर कृष्ण साहब नूं देखिया।

संगत बैठी गुरु दे चरणा विच। लाल चंद बड़ा खुश, परे दरबार विच मैं जित जावांगा, क्योंकि जेड़ा बोल ही नहीं सकदा, सोनी नहीं सकदा, वो किवें गीता पढ़ेगा। गुरु की बेअदबी हो जाएगी, मेरी जित होगी। आके मत्था टेकिया, कहन लगा महाराज एदे कोलों गीता पढ़वाओ। एक बेनती करा सत्संग, गुरु हरि कृष्ण साहब जी महाराज जिते होर संसार नो कई देना दितियां, उथे एक होर देन दिती। वो एक एहो जिहा समा सी जद लोग जमदियां तियां नो मार देंदे सन। तियां नो मारन दा रवाज अज भी है, साइंस ने तरक्की कीती है, पर तरक्की इथों तक जा पहुंची है कि पता लग जांदा है पहला ही माता दे पेट विच लड़की है कि लड़का। ते बहुते लोगों नूं जद पता लगता है जम्मण वाली लड़की है ते जम्मण तो पहला ही उन्हों मार देंदे, लड़का चाहिदा है लड़की नहीं। पर जे लड़कियां ही ना होणगियां ते संसार दी खेड किवें चलेगी। अगर को लड़की नहीं होगी ते कल नूं मां कित्थों होवेगी, भैण कित्थों होएगी, पत्नी कित्थों होएगी। केड़ा अकिरत कान इंसान हो गया है। एक पासे मां दे पेट तो जन्म लैंदा है ते वड्डा होके फिर ओही कहंदा है कि तियां दी लोड़ नहीं। हैरानगी ते उदों ही हुंदी है जदों सस्सां भी नूहां दे दुआले हो जांदियां ने कि ए मुंडा नहीं जम सकदी, कुड़ियां नूं जन्म दे रही है। जद कि सस नूं नूह दा साथ देना चाहिदा, धीए मवी ते तीहां। अगर मेरे मापे मेरा गल घुट छड दे ते की अज मैं हुंदी। दातां ते दाते दे हाथ हन। जद औरत औरत दी दुश्मन बनदी है उतों बड़ा दुख हुंदा है। जद कि औरत नूं औरत दा मान रखना चाहिदा है। तियां हो गईआं ते नूं दा की दोष है। इक पासे कहने आ जम्मण मरना हुक्म है, पाने आवे जाए, जे सारा कुछ ओदे हुक्म विच है फिर ओदे हुक्म दे अगे असी बोलदे क्यों। ती होवे या पुत्र होवे, ए दाते दी दात है, ए ठीक है। कि एक आस होंदी है मुंडा होवेगा, व्याह होवेगा, घर रहेगा, साडा खानदान वधेगा। ती ने सहुरे चले जाना, इस करके मुंडिया की लोड़ समझदे आ कि बुढ़े वारे साडी सेवा करनगे। पर ऐसे पुत्रां दा वी की फायदा है जेड़े वड्डे हो के मापिया नूं ठोकरा मार के घरों बाहर कढ दे। जे सुख वास्ते औलाद चाहने आ फिर सुख ते भागा नाल ही मिलदा। आखो सतनाम श्री वाहे। पुत्रां वाले भी रोंदे ने क्योंकि पुछदे नहीं। विचार कर रहे सां कि जमदियां तियां नूं लोक मार देंदे ने, ती नहीं चाहीदी। मुंडा होवे ते सारे पिंड विच रौला कि मुंडा जम्मिया, जे धी होवे ते जे पुछो किसे नूं की होया ते मूंह लटकाया हुंदा जिवें सालां दा बीमार धी होई है। इन्ने उदास हो जांदे कि जिवें किसे ने साह खिच लए ने। पर साध संगत, तुहानूं गुरु नानक साहिब जी दा पावन उपदेश

है सो क्यों मंदा आखिए जित जमे राजान। तियां नो माड़ा कहण वाले आ अपने वाल भी ते देख, अगर तेरी मां ना होंदी ते तू कित्थों होंदा, तेरी पत्नी ना होंदी तेरा ग्रिस्त किछ होंदा, पत्नी है ते ग्रिस्त है ना। उस वेले भी लोग तियां नू मारदे सन, और किस तरह, एक हाथ विच छुरा एक हाथ विच नवी जमी हुई थी, ते पिता बाजार विच दौड़दा सी, किसने लड़की लैनी है ते ले लो नहीं ते मैं इस नू मारन लगा। ए इतिहासक सच्चाइयां ने, जे कोई नहीं सी लैंदा उन्हू मार देंदे सन। जमदियां तियां नू मारन दा रवाज सी, ता गुरु हरकृष्ण साहब महाराज ने उस वेले कहा धी मार नाल लड़की मार दे नाल मेरा कोई नाता नहीं, ते ना ही सिख ने ऐसे बंदे दे नाल कोई नाता रखना है जिहड़े तियां नू मारदे हन। और एक दोष लड़के वालियां दा भी है जिहड़े तियां नू तंग करदे हन, नूहां कोलों दाज मंगदे हन, उहनां दा जीवन नरक बना दिंदे हन। इस करके भी मापे कई वारी सोचते ने कि धी ना होवे ते चंगा है, पहला घर लभदे आ कई साल लंघ जांदे ने, जे लड़का लभ पवे फिर उन्हां दियां मंगां पूरियां नहीं हुंदियां। एक दोष साडा भी है, असी भी चंगा घर देखदे आ, बहुता पैसा देखदे आ, कार होवे बंगला होवे, इह क्यों नहीं देखदे कि जिहदे नाल लड़की व्याहणी है उहदा जीवन देखिए, उहदा आचरण देखिए, उहदे असूल देखिए, चंगे जीवन आला देखिए, उच्चे जीवन आला देखिए। तो जे किस्मत होवे तो सब कुछ बन जांदा है, तो जे किस्मत माड़ी होवे तो जो कुछ कोल है वह भी चला जांदा है।

मन हर के नाम की महिमा ऊच, नानक नाम उतरे पतत बहमूच, बहुत सियाण जमखा पाओ पिया पैनक जतन का तृष्ण त्रापै। भीख अनेक अगर नहीं बुझै, कोड़ पाव दरगै नहीं सिजै।

प्रभु अपने मना जिन तेरी मन बनत बनाई उठत बैठत सद तिसै त्याई तिसै त्याय जो एक अलख है इहा उहा नानक तेरी रख है जे प्रसाद करै पुन बहुदान मन आठ पैर कर तिसका ध्यान जे प्रसाद।

जे प्रसाद तेरी निकी जात सो प्रभ सिमर सदा दिन रात जे प्रसाद तेरी पत रह गुर प्रसाद नानक जस कह जे प्रसाद सुन है कर्ण नाद जे प्रसाद पेखै बिस्माद जे प्रसाद बोले अमृत रसना जे प्रसाद सुख सहजे बसना जे प्रसाद हस कर चले जे प्रसाद संपूर्ण फले जे प्रसाद परम गत पावै जे प्रसाद सुख सह समावै ऐसा प्रभ त्याग अवर कत लाको गुर प्रसाद नानक मन जागो जे प्रसाद तू प्रगट संसार तिस प्रभ कौ मूल न मनो विसार जे

कमल विगास प्रभ सुख सहन बसै मन सोए प्रभ दया ते मत उत्तम होए सर्व निधान प्रभ तेरी मया आपो कसू ना किन्हु लया।

ब्रह्म ज्ञानी कै नाही तंता ब्रह्म ज्ञानी लेता आवत भंदा ब्रह्म ज्ञानी कै होय सो पला ब्रह्म ज्ञानी सो फल फला ब्रह्म ज्ञानी संग सगलोदा।

तड़ पड़ाए। संत का दुखी भूखा नहीं राजे, ज्यो पावक इंद नहीं त्रापै। संत का दुखी छुटे अकेला, ज्यो बुआड़ तिलके तुमाय दुहेला। संत का दुखी धर्म तेरै, संत का दुखी साध मिथ्या कैस। कीर्तनंद का तुर ही पया, नानक जो तिस पावे सोई थया। संत का दुखी बिगड़ रूप हो जाए, संत के दुखी को दरगह मिले सजाए। संत का दुखी सदा सहकाइए, संत का दुखी ना मरे ना जीवाइए। संत के दुखी की पूजा ना आसा, संत का दुखी उठ चले निरासा। संत के दुख ना तुष्ट है कोई, जैसा भाव है तैसा कोई होए। पया कितना मिटे कोई, नानक जाने सच्चा सोए। सब घट तिस के ओ करने हार, सदा सदा तिस को नमस्कार। प्रभु की उस्तुति करो दिन रात।

गुरुप्रसाद अपने आप सोचै तिस की जानो तिस ना बुझै। साध संग हर हर जस कहत सर्व रोग त्यो हर जन रहत अंधन कीर्तन केवल बखियान। ग्रस्त मैं सोई निर्वाण एक उपर जन किया सा तिस की कटिए जम की पासा। पाप की जिस मन भूख नानक तिस ना लागे दुख। जिस को हर प्रमंच त्यावे सो संसो हिलाही डुलावे। जिस पर अपना कृपा करे सो सेव को किसते डरे। जैसा सा तैसा दिष्टा अपने कार्य में आप समाया। सोदत सोदत सोदत सीजा गुरु प्रसाद तस बूझिया। जब देखो तब सब किस मूल नानक सो सुखम सोई असफूल। न किस जन्मे न किस मरे आपने चलते आप ही करे। आम जान दृष्ट अंदृष्ट आज्ञाकारी धारी सब श्रेष्ठ। आपे आप सगल में है आप अनक जुगत रच थाप थाप। अब नासी नाही किश खंड धारण धार्यो ब्रह्मंड। अलख अपे पुरख प्रताप आप जपाए ता नानक जाप।

वह सुखदाई ताकी किम किरणा पाई अंक भगत बंधन नित करें चरण कमल हृदय सिमरै साध बलिहारी सतगुर अपने नान जिस प्रसाद है सा प्रभ जपने एहो अरस पावे जन कोय अमृत पियो अमृत सो होय उस पुरकाक दी उस पुरकाक नाही कदे विनाश जाके मन प्रगट गुण दास आठ पैर हर का नाम ले सच दे सेवको दे मोह माया के संग न ले मन मेरा के हर हर एक अंधकार दी प्रगासे नानक ब्रह्म दुख तहते नासे

0: अष्टपदी संत जना मिल करो विचार एक सिमर नाम आधार
1: करन कार सो प्रभु समर्थ दृढ़ कर कहो नाम प्रभात इहो तन संचो हो भगवंत संत जना का निर्मल मंत एक आस राखो मन माहे सर्व रोग नानक मिट जाहे जिस दन को चार कुंठ ठुटतावे सो तन हर सेवा ते पावे जिस सुखो नित बाचे मीत सो सुख साधु संग परीत जिस शोभा को करे पली करनी सा शोभा बजर की सरनी।

मन पर बोधो हर कहना है दे दिस्तावत आ बैठाए। ताको बिघन न लागे कोई जा कर दे बसे हर सोई। कल ताती ठंडा हर न हो सिमर सिमर सदा सुख पाओ। पाओ बिन से पूर्ण हो आस भगत पाए आत्म प्रगास। तित कर जाए बसे अविनाशी कहु नानक काटी जम फांसी। तत विचार कहे जन साचा जन्म मरे सो काचो काचा। आवागमन मटे प्रभु सेव आप त्याग शरण गुरुदेव।

एको एक एक हर आप पूरन पूर है ओ प्रभु व्याप अनेक विस्तार एक ते पहे एक राज प्राचत गए मानतन अंतर एक प्रभु राता गुर प्रसाद नानक एक जाता सलोक फिरत।

मन बिकसे साध चरण तोय, भगत जना के मंतन रंग, बिरला को पावे संग। एक बस दीजे करमया, गुर प्रसाद नाम जप लया, ताकि उपमा कही न जाए, नानक रहया सर्व समाए। प्रभु बख्शन दीन दयाल, भगत वचन सदा कृपा।

तब केते होता। जब तारी अपन सुन समाद, तब बैर विरोध किस संग मात। जब इसका वरण चहन न जापत, तब हर सो कहो किसे व्यापद। जब अपन आप पार ब्रह्म, तब मुहो कहा किस होवत परम। आपन खेल आप वर्तीजा, नान करने हार न दूजा। जब होवत प्रभु केवल तनी, तब बांध मुकत कहो किसको गनी। जब एके हर गम पार, तब नरक स्वर्ग कहो कौन अवतार। जब निर्गुण प्रभु सहज सुभाए, तब शिव सकत कहो कित ठाए। जब आप अपनी ज्योत रह, तब कवन डर कवन कदर है। आपन चलित आप करने हार, नानक ठाकुर गम पार। अविनाशी सुखापन्ना संतय, जन्म वरण कहो कहा विनाशन। जब पूरन करता प्रभु सोए, तब जम की त्रास कहो किस होए। जब अवगत अगोचर प्रभु एका, तब चित्र गुप्त।

माए बाप मित्र सुत पाई, जह सर्व कला आपे परपीन, परबीन ते वेद कतेब कहा को जीन। जब आपन आप आप उरतारे तो सगन अब सगन कहा विचार।

पार ब्रह्म निकट कर पेख सास था सिमरो गोविंद मन अंतर की उतरै चिंद आस अनित्या गौतरंग संत जना की तूर मन मंग आप छोड़ बेनती करहो साध संगगन सागर तरहो हर तन के पर लिहो पंडार नानक गुर पूरे नमस्कार खेम कुशल सहज आनंद साध संग पज परमा।